0: हांगार अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मिंदम पार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
2: अंगादी उंगन नादी मुनि फोई फिलवा दिनु मुगा
3: थेदु वेरी कमायको
2: एकुवेरी कमायको
3: एरोवेस मिहारोवेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम्मे गातुगा दिवेहराज्य के अडु
2: एंहा सतरस्ते कसाली स्नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड